मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

0: The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल, दिल का कातिल है तू।

सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर, यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर, जिंदगी खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, कितनों को झेल हुई, जुर्म में इजाफा है, हम आना के देर हुई, इस कलम से वादा है।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया फेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

से चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

हम सफर है केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर जो मांगे दुआ में

प्यार के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

0: नफरत में तो लेना कोई
1: पॉप बनी लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया, मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया, टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया, बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

दाढ़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गए।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: आस हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Your home for community, CJMR 1320.